0: They say the view from the top changes everything. But for a few, the view from the clouds is the only one that matters. The Indian Air Force invites applications for commissioned officers through AFCAT 2 of 2026. Registrations open on May 20th, 2026. Visit afcat.edcil.co.in and take the first step toward the blue.
1: ओहो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है सफाई भी शॉपिंग भी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता
2: तो
1: है
2: ऐसा बोलो ना
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान ये हुई ना बात
3: क्यों छोटे साहब वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके साथ